केशर कागेश्वर बागेश्वर फनल मणेश्वर पाटन कुम्भेश्वर सुनकोटी शर्मा रहे किभ्रिंसोर लेले मतिलेश्वर जय गाय दर्शन प्रभु करुण छलीला उनै को चल्दैन चोर प्रभु विषय अरुका कुनै को राम हुन् परमात्मा ते कहाँ भिखारी।

न देशाय लै जाउ फिरता मत लिन्न कसै बनमा कोई दिन शिकार खेल दामा जलपान गर्ने निन्ति गई आश्रमैमा देखि मलाई मोह भई चित खाई धर्ना हाली ठानी प्राण जाय मलाई।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

कैलाय कानी माई गाये पाने सके ना माई ले बेरे सानो फुलफुलो तोरी एरा ना बाईनी छोरी सके ना माई ले बेरे सानो पारी बड़ा को तो मंचे आयो के ताई लायो माल माताओ यारी रामा डाल के यो जमानो के ताई लायो माल माताओ अहिले को दसैं माटी गाउँमा बसाई आ गाउँ दसैं कलकत्ता कलिलो गाबा सुनी देवै बाबा गाउँ दसैँ कलकत्ता भोरको वर्षा पानी नपर्नाले उमारैमा बिग्रियो जाऊ कलिलो गाबा सानो मेरो बाबा उमारैमा बिग्रियो जाऊ दिनभरी खोजीलाई साथीलाई सोधे मेरो माया कतरे छौ

नमस्कार रेडियो शैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज बाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 आषाढ़ कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 13 तारीख आषाढ़ 29 गते सोमवार चतुर्दशी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडाखुन सवाले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कई काम राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा।

मेरो नाम सूर्यबार थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दशु जोदायको फलचारी बुद्धिहीन तन जानकी सुमिर पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तिम्रो उजागर, रामदूत अजुलत बलधाम, अञ्जनी पुत्र पवन सुत राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार्य स्मृति संगी, कंचन वर्ण विरास वेश, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बरजाओ ध्वज विराजई, कांधे मुझे जनेव साजई, शंकर सुमन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगा दरवाया, हेम रूप दरी असुर संहारी, रामचंद्र के काज संहारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हर्षियुर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहज बदन तुम्हार जस गावे, अस्क श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दीपाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लिल्यो ताई मधु फल जानु, प्रभु मंदिर का मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुगर तुम्हारे देते, राम दुबारे तुम रखबारे, वतन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी सरना, तुम रख से काम को डरना, आपन तेज समारोह आपई, तीनों लोग हागते कापई,